दिल ना जला, मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करो ले तेरे पाँव परो, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
0: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती सनबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहावी।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले।

जुते तेरे भगत रसाले। होर के ते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

महत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेश एक दूजी बोला खोए लख लखवीस लख।

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है।
3: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
2: सच?
3: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
1: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंस हिल, इलफर्ड IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफर्ड।
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इलफर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 line.
5: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192-388-3100. Atoll protected.
6: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
7: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
6: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
7: Rich, authentic taste every single time.
6: Royal Chai, brewed for business.
7: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
8: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
9: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
10: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
0: हिमालय कारपेट्स की धधकती हुई सेल गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल रूम साइज रेमिनेंट्स 30 pounds से शुरू तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है चूकिए नहीं विजिट हिमालय कारपेट्स .com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated.

0: कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
2: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली प्रेजेंट्स एन इवनिंग ऑफ एलिगेंस होस्टेड बाय अनीसा नासिर। तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से।
3: शाम चलने लगे
2: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
4: G1

0: होशियार।
1: गुड मॉर्निंग। पधारिए, स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में।

0: बुधवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 22 तारीख और वक्त हमारी आपकी मुलाकात का भाई ब्रिटिश घड़ियों में 10:05 हुआ चाहते हैं और हम खोलते हैं अपनी डायरी याद दिलाते हुए कि भाई काजल पिछले 4 से आपके साथ थी और कल फिर होंगी। अब अपनी बारी है। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। और कहना चाहता हूँ बहनों भाइयों के बज्म तारों ने सजाई थी मगर बज्म तारों ने सजाई थी मगर चांद बिन आसमान सूना था। तेरे आने से हुआ है एहसास कि तुझसे पहले जहान सूना था। रौनकें थी प्रभु की दुनिया में दिल मगर मेहरबान सूना था। तेरी सोचों का हर गली कूचा मान भी लो मेरी जान सूना था।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Tune in to Leica Gold, London's #1 Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
0: और भाई भाइयों फिर से दोहरा दें कि बज्म तारों ने सजाई थी मगर चांद बिन आसमान सूना था। तेरे आने से हुआ है एहसास तुमसे पहले जहान सूना था। रौनकें थी इस खुदा की दुनिया में दिल मगर मेहरबान सूना था। और तेरी सोचों का हर गली कूचा मान ले मेरी जान सूना था। तेरे बिन ये जहान सूना था।

0: छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी भाई मौसम फिल्म का गीत। आज के कार्यक्रम के शुरू में जो बैक टू बैक संगीत हमने चुना वो आपने सुना भाई। पहला गीत था तुम आए तो आया मुझे याद, जख्म फिल्म से लिया गया था ये गीत, अलका याग्निक ने गाया था। और अभी जो गीत आप सुन रहे थे दैट वाज संग बाय लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी। तो साहब इस तरह से शुरुआत होती है लाइका रेडियो नेटवर्क पर गोल्ड के गोल्डन गीतों की। अब हम जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानने के लिए कि आज क्या रेट चल रहा है भारतीय रुपए का पाउंड के मुकाबले।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1, SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK दे रहे हैं 128.8 रुपीस। You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai
3: Like a Gold.
2: Like a Gold.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
4: Om Mangal Budh Veer Shukr Shani Itwar. 7 dinon mein hansna chahiye kam se kam 700 baar.
5: हाँ जी बिल्कुल, हंसना चाहिए भाई, मौका मिले तो, कोई घटना मतलब हंसी मजाक की कोई घटना घटे तो, यूं ही हंसने से तो फिर लोग आपको कुछ और समझ बैठेंगे। देखिए, एक लड़की जो है कहती है एक तस्वीर खींचने की इजाज़त है, मैंने सोचा वो मेरी फ़ोटो लेना चाहती है भाई, कभी कभी होता है ऐसा, तो मैंने कहा हाँ हाँ लीजिए लीजिए। कहती नहीं नहीं मैं नहीं लूँगी, आप मेरी फ़ोटो लीजिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ ना जहाँ, ये स्पॉट बहुत अच्छा है, कर लो क्या करोगे, गलतफहमी दूर। मैंने कहा ठीक है। अब भाई मैं उनकी फ़ोटो ले रहा था तो मैडम ने शेर बोल दिया, क्या तस्वीर हमारी खींच रहे हो, दिल की कली को सींच रहे हो, लेकिन हमको ये बतलाओ एक आँख क्यों मीच रहे हो, बहाने से आँख मारते हो। अरे नहीं साहब, देखिए वैसे आँखों का काम है लड़ना और लड़ाना, कोई तो बीच में आना चाहिए भाई, लोगों को चश्मा लगाना चाहिए।
6: माशाल्लाह।

0: खींचिए भाई तस्वीर खींचिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं तो खींचते भी नहीं, कहते आप खींची खींचाई दे दो जी, आप अपनी फोटो दे दो, क्या करेंगे? पता क्या कहा? कंध पे फोटो लगाना चाहता हूँ, कंध यानी दीवार पे। चमनलाल चमन जी की कलम से ये शायरी बोले, दीवार पे फोटो लगाना चाहता हूँ। क्यों जी? बोले फटे वॉलपेपर को छुपाना चाहता हूँ। वॉलपेपर फट गया, उसको छुपाना चाहता हूँ वहां से। और मेरे दिल की बात अगर आप पूछते हो शर्मा जी, मेरे मन की बात अगर आप पूछते हो, तो आपसे मैं डिनर खाना चाहता हूँ।
1: दुल्हन बनी है आज तो तकदीर आपकी, दुल्हन।
0: याद आते हैं भाई चमनलाल चमन बहुत, कभी कभी उनकी जब शायरी, जब उनकी किताब, उनकी कविताएं, उनके जोक्स हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं तो दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे दिल में है। क्या कहने माशाल्लाह। धीरे धीरे हम खबरों की ओर बढ़ रहे हैं और भाई पॉलिटिक्स लेटेस्ट में जो है, यहाँ यूके में तो बर्नम ब्रिंगिंग बैक 2 pounds बस फेयर कैप। अच्छी बात है, कुछ तो भाई नए फैसले उनके स्वागत योग्य होंगे। धीरे धीरे उनके मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, धीरे धीरे लोगों की जुबान पर नाम चढ़ रहा है एंडी बर्नहम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें हैं, पहले तो बता दें ये गीत आप तक किसने पहुंचाया और उसके बाद खबरें लेकर आते हैं।
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: Like a gold.
0: Like a radio network. Ab aap रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप मालिकों की इनडेफिनेट हड़ताल, कारण क्या है? ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने सरकार के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रहने के बाद मुल्क भर में इनडेफिनेट हड़ताल का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि 22 और 23 जुलाई को 2026 की मध्य रात्रि यानी आज रात 12 बजे से पाकिस्तान के सभी पेट्रोल पंप अगले आदेश तक बंद रहेंगे। एसोसिएशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पेट्रोल पंप मालिकों के मार्जिन में बढ़ोतरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें रोजाना तय करने के प्रस्ताव को लेकर पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक के साथ हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है और अब पेट्रोल मालिकों पंप मालिकों का कहना है कि इस मुद्दे पर पिछले कई हफ्तों से सरकार के साथ बातचीत चल रही थी और विरोध की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। संगठन ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार उनकी मांगों पर पॉजिटिव फैसला नहीं लेती है। ईरान के प्रेसिडेंट पेजिशकियान ने अपने ही मुल्क के सरकारी न्यूज चैनल की कड़ी आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है। मसूद पेजिशकियान ने कहा कि सरकारी चैनल ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के बयान का एक तय हिस्सा चलाया जबकि पूरा बयान नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए खामनेई ने मंजूरी दी थी लेकिन टीवी चैनल ने खामनेई के सिर्फ उन बयानों पर ध्यान दिया जिनमें बातचीत से इनकार किया गया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP और स्टूडेंट्स का प्रदर्शन जारी है। आज सुबह हुई बारिश में प्रोटेस्टर्स यानी प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे और तिरपाल का इस्तेमाल करके पानी से बचते रहे, बारिश से बचते रहे। इससे पहले कल देर शाम को शिवसेना UBT नेता उद्धव ठाकरे और TMC नेता महुआ मोइत्रा समेत कई लीडर्स वहां पहुंचे। जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को लेकर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि कहीं देश के अंदर और बाहर के कुछ गलत लोग छात्रों के गुस्से और परेशानियों का फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है पर राजनेता मोदी के खिलाफ अपना गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए उनके साथ जुड़ रहे हैं। प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जो देश विरोधी तत्व हैं उनकी ओर से हंगामा फैलाने या उसकी दिशा बदलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं के इंपोर्ट को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से इन दवाइयों पर 0% टैरिफ लगेगा, लेकिन 1 साल बाद इसे बढ़ाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में लाई जाने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल की अवधि तक टैरिफ 0% रहेगा, 0%। इसके बाद 1 साल की अवधि के लिए टैरिफ बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा और उसके बाद ये 200% हो जाएगा। भारत से आने वाली खबरों में तमिलनाडु के सीएम विजय की पार्टी ने राहुल गांधी को हिरासत में लेने पर एक बयान दिया है। तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय की पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिरासत में लेना और हथकड़ी लगाकर ले जाना ये लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। राहुल गांधी भाई स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जंतर मंतर बना पहुंचकर प्रधानमंत्री के घर के आगे जाकर बैठ गए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने आज दोपहर 11:30 बजे वहां भारत के समय के अनुसार 16 मेट्रो स्टेशन बंद कराने की जानकारी दी है। DMRC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 मेट्रो स्टेशन का नाम जारी करते हुए लिखा कि ये मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि राजीव

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जारी संकट को खत्म करने के लिए बातचीत और समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ईरान इस मामले में गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहा है। साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में रूबियो ने अमेरिका ईरान टेंशन को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब भी ईरान के साथ ये संकट खत्म करने के लिए बातचीत को तैयार है, लेकिन ईरान बातचीत को लेकर के सीरियस नहीं है। पटना में भी स्टूडेंट्स का प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने किया वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल वहां। दिल्ली में चल रहे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की हिमायत में बिहार की राजधानी पटना में आज बुधवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के आह्वान पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और इस प्रदर्शन में आईसा के छात्रों के अलावा अन्य कई जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे भी छात्र जुड़े। और आपको बता दें भाई, कांग्रेस जनता पार्टी ने सोनम वांगचुक को एक पत्र लिख करके एक मांग की है। सीजेपी ने आज सोनम वांगचुक, जो कई दिनों से हड़ताल पर थे, बाद में उन्हें वहां से उठा करके अस्पताल ले जाया गया, पूरे सम्मान और दिल से आभार के साथ पार्टी ने कहा कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज अपना अनशन खत्म कर दीजिए। आपके त्याग ने पूरे देश के हजारों स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया है। 20 जुलाई को अलग अलग राज्यों से सिर्फ युवा जो है वह आपके इस आंदोलन की हिमायत में दिल्ली पहुंचे हैं।

0: ईरान के प्रेसिडेंट पेजिशियान ने अपने देश के सरकारी न्यूज चैनल की भाई आलोचना की, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। साथ में ये एक बार फिर बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल पंप मालिकों की इनडेफिनेट हड़ताल चल रही है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी छात्रों का पॉलिटिकल इस्तेमाल करके संसद के मॉनसून सेशन में रुकावट डालना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार देर रात एक्स पर कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना दिया, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। आपको बता दें भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स धर्मेंद्र प्रधान के ही इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at Quality Food Branches.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208 951 0111.
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
4: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट. कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: लीजिए साहब, हम बताते हैं आपको करेंसी रेट्स LemFi की। एक पाउंड के बदले एट दिस टाइम दे आर गिविंग 129.09 इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपए वो दे रहे हैं 371.84। एक पाउंड के बदले श्रीलंकन रुपए 449.97, बांग्लादेशी टके 165.05, अफगान अफगानी 89.1।
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: भाई पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतें जो ढलान पर थी, लेकिन आज फिर उछाला देखा जा रहा है। द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 99.1 पाउंड्स पर ग्राम।
0: गोल्ड रेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स, PoojaSweets.com, और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली।
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
5: देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
4: डेजर्ट सफारी,
5: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
6: साफो ट्रेवल, at all protected.
7: Every morning a shopkeeper opens his doors.
8: Lights on, shutters up, staff ready.
7: But today's customers don't start on the high street.
8: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
7: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
8: They walk into your competitors.
7: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
9: Dad,
10: what's wrong, beta?
9: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
13: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
12: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
13: And you didn't pay those massive roaming charges?
12: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
14: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
15: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
16: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
17: बीकानेर वाला परंपरा भी,
18: स्वाद भी।
17: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
18: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 02089072444।
19: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
20: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
19: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
21: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क। You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Leica Gold.
22: आइए नमन करें, याद करें, समर्पण करें श्रद्धा स्वर्गीय मुकेश जी को। आज उनकी जयंती है।

मुकेश चंद्र माथुर 1923 में दिल्ली में जन्मे थे भाई, और इनकी आवाज ने ऐसा मुकाम पाया, दर्द की पहचान बन गए। राज कपूर तो कहते थे मेरी आवाज है मुकेश जी। ये गीत हमें ले आया है खबरों के नजदीक

0: खबरों का वक्त हो गया, न्यूज इज नेक्स्ट ऑन लाइक
1: अक्रॉस ग्रेटर लंदन, दिस इज लाइक अ गोल्ड 10:35 AM DAB एंड ऑनलाइन, अ पार्ट ऑफ द लाइक अ रेडियो नेटवर्क.
2: The top stories this hour. Andy Burnham's bringing back a £2 bus fare cap for most journeys in England from January, promising to lead a cost-of-living government. The Transport Secretary says much of the near £500 million cost will come from reallocating international climate grants to loans. Yesterday, some argued a VAT cut on household electricity bills in Britain would be paid for by cutting an unfunded scheme. Shadow Chancellor Sir Mel Strides among critics.
3: We're seeing all these things come out without a clear plan behind them. That's why we're now having discussions about whether they're funded or not. And the conclusion of all this will be increased taxes.
2: Prices are rising more slowly when it comes to services and what we pay in the shops. Inflation fell to 2.6% in June. The Office for National Statistics says it had been 0.2 percentage points higher the previous month. Our business correspondent Paul Kelso has been digging into the reasons behind the drop.
4: Two biggest drivers of that, number one, has been fuel prices. Another factor dragging down inflation from the British Retail Consortium, not the Office of National Statistics, but again, shows food prices were indeed on the decline May into June.
2: But rising energy prices are expected to push inflation higher over the rest of the year. Two of PC Andrew Harper's killers may be eligible for early release under plans to ease prison overcrowding. His mum says it's a slap in the face. The officer was dragged behind a car in Berkshire in 2019. More than 1,000 staff of the Metropolitan Police have been removed from their posts. Inspectors say vetting still needs to improve. Santander has promised not to shut any more branches in the UK before 2028. The bank announced 44 would close at the start of the year, putting almost 300 jobs at risk. And fans and tourists on a Beatles bus tour in Liverpool were left stunned when Paul McCartney pulled up next to them in his car. The musician had Ringo Starr on FaceTime and held his phone out of the window so his bandmate could say hello. The bus driver told reporters he initially thought it was a joke. From Sky News, I'm Faye Rowlands.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
5: So we need a social media wrap-up for the Work Bake Off. Any takers?
6: I can design posts on Canva.
7: I can also design posts on Canva.
6: Aha. Uh-huh. Well, I can design posts with the jam tart theme on Canva.
7: That's great. I can design posts with the jam tart theme and generate a moving image of a jam roly-poly rolling on Canva.
6: Well, I can design posts and create a 3D headline that says bake your tarts out on Canva.
7: I can design posts and create a 3D headline and turn your face into a Bakewell tart on Canva.
6: All right, calm down.
5: With a huge range of easy-to-use design AI tools, anyone can with Canva.
6: I can slice a video of a croquembouche.
8: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: वेरी गुड मॉर्निंग. मौसम की भविष्यवाणी, भाई आज भी मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा. तापमान भी जो है वो अच्छा खासा है. लंदन में 26 डिग्री और मिडलैंड में 24 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. हल्की हवाएं चलेंगी और साहब देर इज़ ए स्मॉल चांस इन फ्यू एरियाज फॉर द आइसोलेटेड शॉवर्स. तो कहीं कहीं छुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, पर ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. आज रात को भी आसमान साफ रहने की संभावनाएं ज्यादा हैं. तो इस तरह का मौसम होगा आज.
8: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
9: Like a gold.
10: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में, जब हम आपके लिए चिंतन लाते हैं. भाई चिंतन की लोकप्रियता का एहसास मुझे चलते फिरते आते जाते कई जगह से मिल जाता है. अभी देखिए सुबह सुबह ट्रेन में मैं जोगिया जी हमारे एक मित्र हैं उनसे बात कर रहा था, तो सामने बैठी दो महिलाएं देखने लगी घूर के, फिर कहने लगी आपकी आवाज़ से लगता है कि आप रवि शर्मा हैं. मैंने कहा हाँ मैं हूँ, बताइए. कहने लगी कि रवि जी हम आपका चिंतन बड़े चाव से सुनते हैं. तो भाई उन महिलाओं को भी समर्पित करते हैं और सभी चिंतन प्रेमियों को आज का विशेष चिंतन हम समर्पित करना चाहते हैं इस भावना के साथ कि आपने रथ यात्रा तो देखी है ना यहाँ लंदन में. भाई ओरिजिनल रथ यात्रा जो पुरी में उड़ीसा में होती है, अब उड़ीसा से आए एक संत महानुभाव से हम आपका आपकी आपका परिचय करवाएं या आपकी बातचीत सुनवाएं, उनकी बातचीत सुनवाएं आपसे, तो भाई तैयार रहिएगा। हम बड़े श्रद्धा से, बड़े आदर से परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय स्वामी शिवाचिदानंद सरस्वती से संपर्क करने जा रहे हैं। आप 89 बरस की आयु में भुवनेश्वर उड़ीसा से पधारे हैं और शिवानंद सरस्वती जी के डायरेक्ट आप अनुयायी हैं, तो स्वागत है आपका स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। नमस्कार। नमस्कार।
9: प्रणाम। प्रणाम
0: जी। आपका पहले तो ब्रिटेन में स्वागत है, फिर आपका लाइका रेडियो नेटवर्क पर स्वागत है, हमारे स्टूडियो में आपकी आवाज का स्वागत है। बताइए।
9: धन्यवाद जी।
0: जी, आपका जो सात्विक संदेश सुनने के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी बताइए, अपनी संस्था के विषय में बताइए।
9: फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस फ्रॉम कॉस्मिक फ्रेंड।
0: जी धन्यवाद।
9: बाय द इनविटेशन ऑफ जगन्नाथ सोसाइटी, दिस सेवक इज हियर and is conveying his message, what he has experienced in life. Peace capsules. Share what you have with others. Even this will pass away. Serve, love, meditate, realize. Adapt, adjust, accommodate.
0: क्या बात है?
9: Detach. Attach. Thou art that. These are the messages of Swami Shivananda, founder of the Divine Life Society, 20th century saint. He says, feel for others, live for others, take less, give more. Remember your Lord's sweet name constantly. By practicing these, we will get peace. Individual peace leads to world peace.
0: Ji,
9: if we practice these noble virtues, serenity, regularity, absence of vanity, sincerity, simplicity, veracity, equanimity, fixity, non-irritability, adaptability, humility, tenacity, integrity, nobility, magnanimity, charity, generosity, purity. Practice daily these 18 ities, you'll soon attain immortality. Brahman is the only real entity. Mr. So-and-so is a false non-entity.
0: Swami ji.
9: You will abide in eternity and infinity. You will behold unity in diversity. You cannot attain this in the university.
0: Swami ji. आपकी बात अंग्रेजी में हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है, लेकिन हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो है वो हिंदी, पंजाबी, गुजराती यानी भारतीय भाषाओं को भी अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, और क्योंकि समय की मर्यादा है तो आप संक्षिप्त शब्दों में जो आपका
9: जी, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है।
0: इस देह को मैं मानना कि मैं शरीर हूँ बहुत बड़ा पाप है।
9: सबसे बड़ा पाप है। सब पापों इसी का पुत्र है, सब पापों का एक बाप है। हम जो इस शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं, शरीर मन के साथ, यही है जितनी समस्याएं हैं सबका मूल कारण है ये मन। ये मन दुश्मन है। मन को एंगेज करने के लिए नाम, भगवान का अपना अपना इष्ट देव का प्यारा नाम जो है, मन के साथ नाम को जोड़ लीजिए तो आप रोबोट बन जाएंगे, यंत्र मानव बन जाएंगे। आज पर द कमांड, भगवान की जो भगवान की आज्ञा से आप परिचालित होंगे। वर्क इज वर्शिप, डेडिकेटेड टू गॉड। कर्म ही पूजा है। अब सौंप दीजिए सब कर्म को, कर्म का फल भगवान को समर्पण कर देने से आप और बंधन में नहीं गिरेंगे।
0: क्या बात है स्वामी जी यहाँ रेडियो पर समय की मर्यादा के कारण हम आपको एक सीमित समय तक ही ले सकते थे स्टूडियो में, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम आपका हो रहा हो जहाँ लोग आ सकें और सुन सकें? दूसरा, आपकी ये जगन्नाथ सोसाइटी के विषय में और संगीत के माध्यम से और उपदेश, ये कहीं पर आपका आयोजित हो रहा हो तो बता दीजिए, हम लोगों को वहाँ जाने के लिए आग्रह कर सकते हैं।
9: सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ भगवान ही जगन्नाथ हैं
0: जी,
9: और भगवान का हृदय बहुत कठिन है और फूल से भी कोमल है। जब द्रौपदी माता जी ने अपना कपड़ा पकड़ के हे द्वारकाधीश मुझे बचाओ बचाओ बचाओ बोलती थी, वो सुने नहीं। वज्राद विकठोरानी मृदुनी कुसुमानी छो, भगवान का हृदय जब दोनों हाथ छोड़ ली, कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण शरणागति जब कर ली, अब हे हृदय विहारी तेरे सिवा कौन मेरा, कृष्ण कन्हैया मेरी नैया को पार लगा दे कन्हैया, तब तो गजेंद्र गजराज जो है वो तो पशु थे, वो भी भगवान को पाए थे अपने प्रार्थना के द्वारा। ध्रुव और प्रहलाद बालक थे, कुब्जा एक असुंदरी नारी थी, धर्म व्याध वो तो मांस बेचने वाले थे, ये सब भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि भक्तिया तुष्यति केवलं न तो गुणे ही भक्ति प्रियो माधव, भगवान जगन्नाथ भक्ति प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच,
0: मोक्षयिष्यामि मा शुच। भाई सभी धर्मों का परित्याग करके, सारे अब धर्म से मतलब वो नहीं है कि पूजा पाठ है, धर्म मतलब जितने भी दूसरे कार्य हैं उन्हें अपने ऊपर ना लेकर के, स्वामी जी कहते हैं कि अपना जो कर्तापन है, जो अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, इसका त्याग करके मेरी शरण में आ जा तो तेरे सभी पापों को समाप्त करके मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। ये स्वामी जी सरल शब्दों में कहना चाहते हैं श्लोक के माध्यम से, गीता का श्लोक था। इससे पहले भी स्वामी जी ने भाई बताया है कि मैं अहंकार यानी शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। अब जब आप कहते हैं कि मेरा हाथ, तो जिसे आप मेरा कहेंगे वो आप नहीं हो सकते। मेरा घर, मेरी कलम, मेरी गाड़ी, अब गाड़ी आपकी है लेकिन आप खुद गाड़ी नहीं हैं, मेरा शरीर आप खुद शरीर नहीं है। स्वामी जी सरल शब्दों में भाई और भी व्याख्या कर सकते हैं लेकिन हमारे पास समय की मर्यादा है। अब हम महाराज जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं और भाई उस संस्था को भी, विशेषकर हमारे जो सुकांत भाई हैं जिनके सौजन्य से, और हमारी जो अलका शाह हैं उनके माध्यम से आपसे संपर्क हुआ। स्वामी जी आपके दर्शनों की इच्छा बनी रहेगी। हम चाहते थे कि अगर, हाँ जी, अगर कहीं पर आपका कोई सत्संग है तो उसका एड्रेस बता दीजिए, दिन बता दीजिए, तो बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे आपको।
11: स्लाव हिंदू मंदिर
9: बोलिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
11: इवनिंग में स्लाव मंदिर में रवि भैया हैं, स्लाव हिंदू मंदिर में।
0: ओके।
11: शाम को 6:30 से 7:30 तक स्वामी जी होंगे वहाँ।
0: ओके। आज
11: आज ही है, आज है।
0: ओके, थैंक यू वेरी मच। स्लाव मंदिर में 6:30 से, तो भाई स्लाव मंदिर ये कील ड्राइव में है, आपको बता दें, और वहाँ स्वामी जी का दर्शन और प्रवचन, और मुझे पूरा विश्वास है वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है, आरती और प्रसाद सब वहाँ पर उपलब्ध होता है। थैंक यू सुकांत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जगन्नाथ सोसाइटी के लिए। भाई जगन्नाथ भगवान का ही नाम है, सारे जगत के नाथ, और उड़ीसा में जो रथ यात्रा होती है वो भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र जी की और सुभद्रा जी की, भाई वो यात्रा उसी को लेकर के रथ यात्रा निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुकांत जी, और महाराज जी के चरण स्पर्श मेरी ओर से और हमारे लाइका रेडियो परिवार की ओर से।
11: थैंक यू लवी भाई, धन्यवाद टू यू, लाइका रेडियो और अलका दीदी, नमस्कार।
0: जय श्री कृष्ण।

0: भागा। भर भाइयों, चिंतन आपको सोचने की प्रेरणा देता है, विचार करने की। विचार का नाम ही चिंतन है। हमने वाणी में पढ़ा है, किसी ने बताया हमें कि उसमें लिखा है कि ना सुख है विच ग्रस्त दे ते ना कुछ छड़ गया। ना सुख है विच ग्रस्त दे ना कुछ छड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शरण गया। संतों की शरण में जाने से, उनका व्याख्यान सुनने से, प्रवचन सुनने से और उसको धारण करने से कल्याण होता है, सुख मिलता है। आज का चिंतन, आज का विचार भाई हम कर देते हैं सुकांत जी के की ओर से, और अलका और हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जिनका प्रवचन आपने सुना। 89 बरस की आयु में भुवनेश्वर उड़ीसा से ये पधारे हैं शिवानंद जी, सरस्वती जी के अनुयायी हैं, और आप हैं शिवा चिदानंद सरस्वती जी महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भिजवाइए अपनों को, और आज का रेट अच्छा है, सुन लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके टुडे फॉर £1 गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.8 रुपीस। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: लाइका गोल्ड।
3: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
4: Goodbye.
3: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.

0: और लाइका गोल्ड की ओर से भाई एक संदेश आपके लिए कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी। बड़ी चर्चा है इसकी भाई, ये दिवाली की कथा नहीं, यूँ समझिए कि राम कथा है, हमारे गौरवमय इतिहास की कथा है। द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइविंग एट ओवर वेम्बली अरीना ऑन संडे 27 सितंबर। अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा ये तारीख भाई, पहुंचना है वहाँ। स्टूडेंट प्री शो टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM, ये स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद मेन इवेंट जो है वो शाम 6:15 से 9:30 तक चलेगा। तो क्रिएटेड बाय सनातन इवेंट्स फाउंडेशन, फाउंडर नितिन पालन MBE, इनके अलावा फीचरिंग कोरियोग्राफी फ्रॉम द बॉलीवुड डांस स्कूल टीम। द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोडक्शन ब्रिंग्स द रामायणा टू लाइफ विद 4 chapters, 4 अंकों में ये प्रदर्शन होगा भाई। बिस्पोक 7 song साउंड ट्रैक एंड ए फुल इंटरनेशनल कास्ट इसमें परफॉर्म करेगी। टिकट्स के लिए नोट कीजिए www.diwalistory.com, ये है पता।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: आइए अब एक सुखी पति, सुखी हस्बैंड कौन होता है? वो जो पत्नी की हर बात को सर आंखों में लेता है। जो तुम कहोगी वही कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। यार ना भी तले नहीं लगना चाहिए। अरे जो तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे, ठीक है।

0: up your ho jaye happy soul.
1: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
0: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan. Leica Cool. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे मेकिंग समर फील बेटर दिस इज लाइका गोल्ड
3: यानी

इस गीत को सुनकर आपको एक अभिनेता याद आएगा, दुबला पतला सा आम आदमी सा था पर अभिनय का एक्सपर्ट, मजहर खान। आज दुनिया में होते थे तो भाई वो भी अपना जन्मदिन मना रहे होते, मजहर खान।

0: क्या? हाँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। आते जाते हूँ,
1: आते जाते हुए सबकी खबर रखते हैं। नाम अब्दुल है नहीं साहब, नाम है मजहर खान।
0: रखता हूँ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता।
1: आज के दिन पैदा हुए थे।
0: अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता।
1: इनकी फिल्मी जिंदगी बहुत लंबी नहीं रही, इनकी वैसे भी जिंदगी लंबी नहीं थी। 1955 में जन्मे थे। मुकेश जी की तरह उनका भी आज जन्मदिन है, लेकिन आज जन्मदिन मनाने वालों में कुछ और नाम भी शामिल हैं। अरमान मलिक 1995 में जन्मे थे। और भाई अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो मुंबई या महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस आज के दिन 1970 में जन्मे थे। ये नागपुर में जन्मे थे। रीता बहुगुणा जोशी 1949 में जन्मी थी भाई, ये भी पॉलिटिशियन है। और भाई फिल्मी दुनिया में मान्यता दत्त, संजय दत्त की पत्नी, 1979 में आज ही जन्मी थी। पॉलिटिशियंस में अजीत पवार, स्वर्गीय अजीत पवार 1959 में जन्मे थे। कितने पॉलिटिशियंस जो है आज के दिन दुनिया में आए थे। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन आज है तो भाई हमारी ओर से, हमारे दिल की गहराई से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
2: वन एंड ओनली वन रवि शर्मा ऑन योर नंबर वन रेडियो।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: और LemFi की रेट्स बताएं हम आपको। एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.07 रुपीस, पाकिस्तानी 371.73, श्रीलंकन रुपए 449.8, बांग्लादेशी टकी 165.01 एंड अफगानी 89.41.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
5: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The gold is trading at the rate of 99.13 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.

0: at Golgappiyan da pani.
1: All Monster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London. Soon.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
4: London, good news. आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में. Variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
5: Spring Hits on Leica Radio Network.
6: Sachin Deo Barman ka sangeet lagta hai bhai. और ये क्या लिख भेजा आपने? कहते एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एक किताब की 10 लाख कॉपी 2 दिन में बिक गई. क्या स्पेलिंग मिस्टेक? बोले टाइटल में मिस्टेक हो गई. किताब का टाइटल था, नाम था एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल देगा. गलती से वो प्रिंट हो गया एक आइडिया जो आपकी वाइफ बदल देगा. एक ही दिन में 10 लाख कॉपी की सेल. कोई आइडिया हो तो बताना भाई.

0: आसमा कहती है कि ये गीत मेरे नाम कर दे, इसमें मेरा नाम आता है और ये गीत बना मेरे लिए है। आसमा जी वो ऊपर वाले आसमान की बात कर रहे हैं शायद, पर आप अपने नाम कर लीजिए, कौन रोक सकता है। और हितेश भाई आपने जो लतीफ़ा लिख के भेजा ना, यकीन मानिए आप तो इंडिया में हैं, वहाँ से आपने लतीफ़ा भेजा है, लेकिन यहाँ हमारा घर में लतीफ़ा बन जाएगा अगर हमने इसे बार बार पढ़ा तो। एक या दो बार मैं पहले ब्रॉडकास्ट कर चुका हूँ आपका ये लतीफ़ा पति पत्नी के बीच का, पर भाई इसे अब और ज़्यादा मत पढ़वाइए, पति पत्नियों को मत लड़वाइए। शोभना राय जी, हंसा बोरा जी, और हाँ आज जन्मदिन मनाने वालों में एक और नाम जुड़ गया है, दीमल। भानुबेन कहती हैं कि मेरे बेटे का जन्मदिन भी आज ही है, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। साहब अगला गीत
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा,
0: अगला गीत हमें लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, लेकिन हमने देखा भाई प्यार करते हैं पर डरते हैं। भाई अपने घर में प्यार करो ना, पड़ोसन पर नजर रखते हैं तो डरना पड़ेगा।

0: गाना खत्म हो गया, अब किस चीज का इंतजार है? क्या प्रसाद मिलेगा? मिलेगा मिलेगा भाई, संगीत अपने आप में उस प्रभु का प्रसाद है भाई। ये दो गीत हमने आपको सुनवाए जो बैक टू बैक संगीत के तहत, पहला गाना था रूठे रब को मनाना आसान है पर रूठे यार को मनाना मुश्किल है। देखा हमने, देखा भाई बहुत मुश्किल होता है, कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और भाई दूसरा गीत था दरिया में जहाज चले, ये किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर भी इसमें शामिल थी, शान फिल्म का ये गीत था। तो ये सुनाया हमने आपको प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर में। स्वागत है आपका, दिस इज मनोरंजन अंटिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। माय नेम इज रवि शर्मा और भाई मंडे टू फ्राइडे मैं आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ 10 से 1 बजे के बीच। इसी बीच कुछ और संदेश आकर के हमारे स्क्रीन पर इंतजार कर रहे हैं अपने जिक्र का, जिनमें भाई गुरुदेव गांजा जी, भरत गंगाराम, विनय मॉरिशस वाले, विजय विजय, हाँ थैंक यू वेरी मच, और भाई रितेश वो गुजरात वाले, और आप कौन हैं, अर्जुन जी, थैंक यू। ऑलवेज माय फेवरेट रेडियो इज लाइक अ गोल्ड, कितने अच्छे और सच्चे इंसान हैं आप, सच बोलते हैं बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और आप कौन हैं, आपका नाम ढूंढ रहा हूं मैं, कहाँ है, राजेश, राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। हंसा बोरा, शोभना राय और भारत से आप चिंतन की प्रशंसा में लिख रहे हैं, केतकी यू आर स्टिल इन इंडिया, ओके ओके, हमारी ओर से भी भारत भूमि को प्रणाम कहिएगा। वत्सला जी आपका सात्विक संदेश हमेशा मिलता है, प्राप्त होता है, थैंक यू। और रानी ऑफ स्लव, जगदीश जी बुशी में, प्रकाश नॉर्थोल्ट में, हरविंदर जी, रंजन, जैस्मीन, ये वो लोग हैं भाई जो अपने जुड़े रहने का एहसास कराते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, थैंक यू। शहर राजेंद्र राज, पम्मी सिंह स्लो वाले, अनिल सोनी वियाना वाले और मानसी सरस्वती पंडित जी, थैंक यू वेरी मच, कहते हैं मज़ा आ गया गली में आज चांद निकला सुन करके। कब निकला था, निकला था, मुझे पता ही लगा कब आया और निकल गया। चंदा का गीत भाई, मेरा ख्याल है प्रोग्राम का पहला ही गीत था शायद, हिटल सोलंकी, हिना जहीर खान कराची वाले, भाई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आपको पहले तो पाउंड का रेट बताते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding that today our rate is for £1 in Indian currency we are giving 128.8 rupees. 128 rupees aur 80 paise ka rate chal raha hai. You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express... a few things, because it's time to move on from that ex.
3: Goodbye.
2: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Start to

0: To book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद ले। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
2: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protect.

कौन है ये कन्याकुमारी? कौन ये तपस्वी की तपस्या भंग करने की कोशिश कर रही है? हम बड़े परिपक्व इरादे वाले सन्यासी हैं। बाय द वे, अभी बात कर नहीं सकते, रेडियो पे हैं, शाम को मिलना।

0: हेमा मालिनी इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक. उनकी फिल्मों के कई गीत आप सुनेंगे. दिस सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म सन्यासी. लता जी की आवाज थी और संगीतकार शंकर जयकिशन की रचना. मुकेश जी साथ में थे पूरे सप्ताह. कई
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

स्वर्गीय मुकेश जी की आज जयंती है भाई, इसलिए कुछ गीत हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन ज्यादातर जानकारी और गीत लेकर बाली ब्रह्म भट्ट आ रहे हैं मेरे बाद। 1 बजे की खबरों के उपरांत वो आपके मेजबान होंगे।

0: feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: स्वर्गीय मुकेश और स्वर्गीय अभी इधर ही है रवि शर्मा की आवाज में अपने भाई दोनों गायक कलाकारों का क्या संयोग बनता है, क्या कॉम्बिनेशन है जब रवि जी आवाज मिलाते हैं मुकेश जी के साथ। पर रंग डांट क्यों रहे यार, ठीक तो कर, धमकी मिल रही है, रेडियो वाले कह रहे हैं अगली बार गाओगे तो स्टूडियो से बाहर हो जाओगे। देखो भाई कुछ भी हो जाए, गाने क्या करें भाई, जब मुकेश जी की आवाज़ में कोई गीत बजता है तो फिर रवि शर्मा अपने आप को रोक नहीं सकता है, बस उनकी आवाज़ सुनते ही मेरा गीत निकल जाता है। स्वर्गीय मुकेश जी आज उनकी जयंती है साहब, उनके बेटे से मुलाकात हुई, मुकेश जी से तो मिलना नहीं हुआ, हालांकि वो हमारे शहर में शो करने आए थे, बड़ी सादगी से गाते थे, हारमोनियम साथ में रख लेते थे बेस के लिए और पीछे म्यूजिशियंस हैं और साहब कई स्टार नाइट्स हमारे यहाँ हुई और भाई हम या तो पर्दों से झांक के सुनते थे या कभी कभी कनात हटा के घुस जाते थे। महेंद्र कपूर नाइट, स्वर्गीय मुकेश नाइट, राज कपूर नाइट जिसमें राजेंद्र कुमार, राज कपूर और भी बहुत सारे अभिनेता आए थे और महेंद्र कपूर नाइट वो भी हुई थी भाई।

0: हाँ ये है संदेश, ये कि भाई कुछ एक संस्थाओं के साथ, कार्यक्रमों के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनमें से ये भी है, लाइका रेडियो इज़ द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th एंड 16th ऑफ ऑगस्ट एट एबे पार्क, ऑल्सो द ब्रेडफोर्ड सिटी मेला ऑन 1st एंड 2nd ऑगस्ट एट सिटी पार्क एंड सेंटेनरी स्क्वायर। तो भाई हम पार्टनर्स हैं, नेचुरली वहाँ पर नज़र आएंगे, सुनाई पड़ेंगे। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रमों के साथ हम जुड़े हुए हैं, जैसे कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज़ द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल विच इज़ टेकिंग प्लेस कब, ऑल्सो इन बर्मिंगम एंड मैनचेस्टर, हाँ वहाँ पर हो रहा है फॉर फिल्म स्क्रीनिंग एंड स्पेशल सोल्ड आउट इवेंट विद आमिर खान, विजिट लंदन इंडियन फेस्टिवल .co.uk उसके बारे में जानकारी के लिए आप वहाँ विजिट कर सकते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: नाम के भाई दे आर अनाउंसिंग दैट द एफसीडीओ हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई. पहले कहा था, अब भाई वो सूचना जो है अब वो पाबंदी हटा ली गई है, तो ट्रैवल कीजिए, दुबई जाइए. कॉल साउथ ऑल ट्रैवल फॉर द मोस्ट कंपेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: लाइका गोल्ड
0: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस.
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: Visit travelhubworld.com.
4: When your husband's got his heart set on making the doer-upper open plan, enjoy every thudding second of it.
5: Yes!
4: Be a step ahead with Barclays Premier, with our exclusive mortgage rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. All mortgages are subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply. New Barclays mortgage applications only.
6: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny and we still put cash back in your pocket.
7: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
6: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
7: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
6: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
8: Backed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02 0 3963 5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: Ilford, ab asli Indian flavors ka maza lijiye.
14: Bikaner wala parampara bhi.
15: Famous chhole bhature, raj kachori, mithai aur bahut kuch aapka intezar kar raha hai. Milte hain 513-519 Cranbrook Road, Gansel, Ilford. IG26HA. Call 07555-506015.
16: Is mahine mera boiler lekar aaya hai प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
17: London, good news, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में. ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
18: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207 132 1458. या लिखिए sales@laikaradio.com. Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
0: मस्ती करो, जबरदस्ती करो, जब तक जियो शान से जियो, कर्जा लेकर के घी पियो।

मस्तों को देखकर दुनिया हंसती है, पर मस्त क्या जाने दुनिया कहां बसती है। मस्त राम मुर्दों से पूछ रहे थे कि मुर्दों कुछ बतलाओगे, तो झट उठकर एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे।

0: मैं तो जाऊं।
1: The Hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
4: इनके रेट्स नोट कीजिए भाई. एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.03 रुपीस, पाकिस्तानी 371.48, श्रीलंकन 449.62, बांग्लादेशी टके 164.99, अफगानी 89.31.
3: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
4: Gold Rate. नोट कीजिए, द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 99.19 पाउंड्स पर ग्राम.
3: गोल्ड रेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स. PoojaSweets.com और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
6: देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
5: डेजर्ट सफारी,
6: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
5: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
6: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
7: साउथ हॉल ट्रेवल. Atoll protected.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल. रूम साइज लेमिनेट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ. लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर. रग्स, बेड्स, सोफास, सब पर 50% ऑफ. कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं. विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल, अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल.
10: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
11: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
10: So where do we find something like that now?
11: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our elders used it.
12: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
13: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
14: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
15: Relax, I've booked the Uber already.
14: How? My roaming isn't even working yet.
15: I switched to Simzy before we left London.
14: Simzy? Since when are you the tech expert?
15: Since I decided I want a stress-free holiday.
16: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
17: T's and C's apply.
18: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट,
0: Pickles Heat. ये है Jaimin Foods का Vibe Check.
18: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
0: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
19: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
20: Four beers, please, garçon!
19: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: और लीजिए साहब, कार्यक्रम को समेटने का समय हो गया है। मेरी बात हंसी में मत टालो, मेरी बात पे थोड़ा गौर करो। हालात का रोना रोती हो, जज्बात पे थोड़ा गौर करो। थोड़ा सा करम मेरी आंखों पे, मेरे हाथ पे थोड़ा गौर करो। शायद बिछड़ू तो पछताओ, इस साथ पे थोड़ा गौर करो। बाली भाई का इंतजार कीजिए, रवि शर्मा को अगली मुलाकात।

0: आज तो ऐसा समय है कि 103rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मुकेश जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम्स, यू कैन से द ट्रेजेडी किंग, मुकेश चंद माथुर, बॉर्न ऑन 22nd ऑफ जुलाई 1923 इन दिल्ली, एंड ही पास्ड अवे इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन डिट्रॉइट ऑन 27th ऑफ अगस्त 1976. अब मुकेश जी के बारे में मैं आपको कुछ कथा सुनाऊं, उसके पहले आप बोलेंगे कि हमको सब मालूम है, इसलिए मैं एक ही काम करता हूं, ऑल द कंपोजर्स, जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कंपोज किए गाने मुकेश जी के लिए, वो इस आवर में मैं पेश करता हूं, एंड देन इन द सेकेंड आवर ऑल द एक्टर्स जिनके लिए मुकेश जी ने गाया. सो इस आवर में थोड़े से चटपटे गाने मैं रखूंगा, एंड देन विल गो अ लिटिल बिट सोबर इन द सेकेंड आवर. सो जो म्यूजिक डायरेक्टर्स रह जाएंगे वो शायद थर्ड आवर में कवर कर लेंगे हम, पर पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आपको एंटरटेन करूं फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स. टुडे इट्स गोना बी अ वेरी नॉस्टैल्जिक, यू कैन से, प्रेजेंटेशन टुडे. एंड 4 बजे सैंडी शाह विल बी कमिंग विद द ड्राइव टाइम, एंड राज बद्दन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स. सो लेट्स गेट ऑन टू द जर्नी. जितनी बातें कम करेंगे उतने गाने ज़्यादा सुनेंगे हम. लेकिन सेकेंड आवर में एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हाउ मुकेश जी बैंकरप्टेड हिमसेल्फ इन चेजिंग अ ड्रीम आफ्टर द गैम्बल ऑफ अ फिल्म्स कॉल्ड मल्हार, माशुका, अनुराग. इनके बाद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में कैसे आ गए, एंड ही बैंकरप्टेड हिमसेल्फ, एंड हु सेव्ड हिम फ्रॉम इट, एंड आगे ही बिकेम अ ग्रेट सिंगर. हाउ, इट्स अ हैप्पी एंडिंग. सो विल गो थ्रू दी जो कठिनाइयों से वो गुजरे, उसके बाद कैसे हैप्पी एंडिंग हुआ. चलो आगे बढ़ते हैं.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
0: Ji haan, the good news is there are new products come up in the range of food products of Jaimin. And thank you, Jaimin, for sponsoring this particular show. And not only that, अभी मैंने दो गाने आपको सुनाए, वो थे शंकर जयकिशन का संगीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत. आवारा फिल्म का शंकर जयकिशन, शंकर जयकिशन के लिए तकरीबन 133 गाने इन्होंने गाए थे, और 99 आई थिंक 99 सॉन्ग्स फॉर कल्याण जी आनंद जी. ये फिल्म छलिया का गाना था. आगे जाते हुए हम शुरुआत करेंगे नौशाद जी से, और नौशाद जी के बाद हम जाएंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, यू कैन से, एंड देन उसके बाद सलील चौधरी, फिर उसके बाद रोशन जी, फिर उसके बाद एस डी बर्मन, एंड देन बेटा आर डी बर्मन, एंड देन विल गो इन टू चित्रगुप्त मे बी, एंड वी ऑल्सो गॉट a couple of names which are quite you can say less known. Hansraj Behl, Chitragupt, aise aise Madan Mohan ji ke ne bhi compose kiye the gaane. So a number game se baat karte hain to 133 songs for Shankar Jaikishan, Kalyan ji Anand ji 99 songs, and then we have 12 songs for S.D. Barman. दूसरे थे 8 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए, 80 गाने गाए थे इन्होंने. तकरीबन 8 गाने किसके लिए थे मैं ज़रा देखता हूँ और आपको बताऊँगा, लेकिन अच्छी कहानी है, सुनते जाइएगा.
3: Okay, Laura, from the top.
4: When your 9-year-old is an unexpected tuba prodigy, and now you want to support her cheek-puffing talent, be a step ahead with Barclays Premier. With personalized financial planning and a dedicated advisor. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. Investment products and services are provided by Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Capital at risk.
5: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है.
6: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में.
5: सच?
6: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह.
7: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA. कॉल करें 07555-506-015. बीकानेर वाला टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इल्फर्ड.
8: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, LVT फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ. कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं. विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Two businesses,
12: same town,
11: same service.
12: One appears on page one of Google,
11: the other doesn't.
12: Guess which one gets the customer?
11: The truth is brutal.
12: The first page of Google gets the business.
11: Everyone else gets what's left.
12: So here's the real question.
11: When your customers search for what you sell, do they find you?
12: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
11: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
13: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
15: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
17: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142. Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
18: Like a Cool, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बाद अब आते हैं सलील चौधरी।
2: तड़प

0: This is Leica Gold across Greater London.
1: अब आते हैं रोशन, सलील चौधरी के बाद रोशन। इंदिवर जी की लिरिक्स है और अनोखी रात का गाना। We are doing music directors who have composed for Mukesh ji. This hour.

Mukesh songs that have been composed by different music directors. हमने सब music directors को पेश किया दूसरे third hour में. ये है SD Burman. Next होंगे उनके बेटे RD Burman और उसके बाद dancing. Yes, सुनते जाइएगा. मुकेश जी की tribute है आज.

0: Breaker Radio Network, broadcasting across Greater London.
1: एस डी बर्मन वॉज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ मुकेश जी's वॉइस. इन्होंने बहुत सारे गाने नहीं गवाए थे, लेकिन बंदिनी फिल्म, मेरी सूरत तेरी आंखें, सब गीत हिट थे. ये है आर डी बर्मन, फिल्म है राजा.

0: ये पुलिस क्यों घूमती है?
1: अरे बाबा, तुम्हें नहीं, किसी चोर को ढूंढती है। दर्दे फुरकत सहे रहे थे, हाँ तो तुम क्या कह रहे थे?
2: बाप बेटे एस डी बर्मन, आर डी बर्मन दोनों ने मुकेश जी को गवाया। ब्यूटिफुल, डीपली सोलफुल बैरिटोन, परफेक्ट फॉर मेलेंकोलिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रोमांटिक मेलोडीज।
0: मैं कुछ कह रहा था।
2: अब एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर को पेश कर रहा हूं जिनका नाम है दान सिंह। दान सिंह ने माई लव फिल्म में मुकेश जी को गवाया था। ब्यूटिफुल सॉन्ग। सो ऑल म्यूजिक डायरेक्टर्स हु हैव कंपोज्ड फॉर मुकेश जी इन दिस आवर एंड इन द थर्ड आवर जो बाकी रह गए हैं, नेक्स्ट आवर इट विल बी एक्टर्स।
3: ओ तेरे प्यार का गम,
2: आनंद बख्शी लिरिक्स।

0: जी हाँ, मुकेश जी को याद कर रहे हैं हम आज ऑन हिज 103rd बर्थ एनिवर्सरी. अब सिग्नेचर पैथोस एंड हैवी ट्रेजिक टोन वो सेकंड टू नन. वो मध्यम सप्तक में ज्यादा प्रेफर करते थे गाना. एंड उनकी करियर कैसे शुरू हुई और एक सैड बहुत ही कठिन दौर से वो गुजरे थे, चलो उनके बारे में बात करते हैं. ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन एक्टर एंड अ सिंगर फॉर फिल्म निर्दोष 1941 में. हीरोइन थी नलिनी जयवंत. इनको इंट्रोड्यूस किया था मोतीलाल, हु वॉज रिलेटेड टू हिम, बट वी वॉन्ट गो टू मच इन टू दैट. लेट्स स्टीम अहेड इन टू फाइंडिंग आउट वॉट प्रॉब्लम्स ही गॉट इन टू. वो फिल्म जो थी निर्दोष 1941 की, उसके बाद द सेकेंड फिल्म वॉज आदाबर्स 1943 की. उसके बाद 1951 में इन्होंने फिल्म मल्हार प्रोड्यूस की थी. जितने पैसे कमाए थे इन्होंने प्रीवियस फिल्म्स में से, वो सब इन्होंने डाल दिए फिल्म मल्हार में. और म्यूजिक डायरेक्टर चुना रोशन. रोशन जी को चुनकर 1951 में ही गॉट द हीरो अर्जुन एंड द हीरोइन शम्मी एंड अंडर द बैनर ऑफ डार्लिंग फिल्म्स. वो 1951 की बात कही. देन ही वॉज अ गेस्ट अपियरेंस, मतलब गेस्ट रोल इन फिल्म आह, राज कपूर की 1953 की फिल्म आह. फिर ही वॉन्टेड टू बी अ हीरो. वॉट हैपन वॉज ही वॉज चेजिंग अ ड्रीम. इनके फेवरेट कुंदन लाल साइगल थे. उन्होंने नोटिस किया कुंदन लाल साइगल वॉज एक्टिंग एंड सिंगिंग, सो ही वॉज अ हीरो इन हिज फिल्म एंड ही वॉज ऑल्सो सिंगिंग हिज सॉन्ग्स एंड ही वॉज ए सुपर स्टार. सो मुकेश जी ने सोचा कि आई कैन डू द सेम बिकॉज ही वॉज गुड लुकिंग एंड ही कुड सिंग. सो इन्होंने वो ही ड्रीम को फॉलो किया. सो एज आफ्टर 1953 आह ही बिकेम अ हीरो इन द फिल्म माशूका ऑपोजिट सुरैया. दीज फिल्म्स डिड नॉट गो वेल एंड देन ऑपोजिट उषा किरण एंड मृदुला रानी उसी फिल्म माशूका में. उसके बाद आई फिल्म अनुराग 1956 की. अनुराग फिल्म में ही वोर थ्री हैट्स. थ्री हैट्स यानी के एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग एंड कंपोजिंग. ही वॉज ऑल्सो द कंपोजर इन द फिल्म. सो फाइनेंशियली मुकेश जी रीच्ड रॉक बॉटम आफ्टर अनुराग. हुआ क्या था कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे विद फिल्म अनुराग, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैड लॉस्ट फेथ इन हिम बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस फ्लॉप्स. सो ही हैड टू टेक मासिव हाई इंटरेस्ट लोन्स फ्रॉम बॉम्बे फाइनेंशियर्स. बॉम्बे के फाइनेंशियर्स आर लिटरल लोन शार्क्स. दुनिया में सब जगह लोन शार्क्स होते हैं. इन्होंने हाई इंटरेस्ट पे पैसा लिया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैड लॉस्ट फेथ इन हिम. कुछ फाइनेंशियर्स ने जो पैसा दिया था वो मना कर रहे थे पैसा देने को. इन्होंने लोन्स लिए. अब गैम्बल ये था कि फिल्म मल्हार, माशूका, अनुराग के बाद ही ब्रॉट हिमसेल्फ रियल रॉक बॉटम. इनके पास बच्चों की स्कूल के फीस के पैसे भी नहीं थे. He tried returning to playback singing, but the industry had moved to Muhammad Rafi Saab and Talat Mahmood. आगे इतने प्रॉब्लम में आ गए थे, लेकिन two people came to the rescue. Three people, I should say. Raj Kapoor, Shankar and Jai Kishan. They all came to his rescue. लेकिन he was so proud. Mukesh ji हैड सो मच प्राइड इन हिम, ही वुड नॉट, हाथ नहीं फैला रहे थे वो। उन्होंने कहा मुझे खैरात के पैसे तो नहीं चाहिए, काम करके कमा के सब पैसे लौटा दूंगा लोगों को। दैट ही ओड फाइनेंशियर्स वर आफ्टर इज बैक। लेकिन राज कपूर जी ने एक युक्ति मारी। व्हाट ही डिड वाज, इन्होंने कहा कि मेरे पास जितने गाने अब रेडी है वो आपको गाने हैं और उसके लिए मैं आपको एडवांस दे रहा हूं। आई एम बुकिंग यू एज माई वॉइस। एंड सो गाने लिखे भी नहीं गए थे लेकिन राज कपूर जी ने ऐसा कहा और शंकर जयकिशन जी ने कहा कि हाँ मैं, हम कंपोज कर रहे हैं वो गाने और आपको गाने हैं ये सब गाने। ऐसा करके उन्होंने उनको एडवांस पैसा दिया एंड मुकेश जी केम आउट ऑफ हिज डेट्स एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। ही बिकेम द वॉइस ऑफ राज कपूर। गाने इनको मालूम था कि इनकी वॉइस वॉज काइंड ऑफ इन द मध्यम सप्तक, मतलब देखो दे वर नॉट एज हाई रेंज सॉन्ग्स एज बैजू बावरा में जो रफ़ी साहब ने गाया, वैसे तो गाने नहीं थे लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स को ऐसा ही कहा गया था कि आप ऐसा कंपोज करें विच सूट्स हिम एंड सूट्स मी, एंड दे डिड जस्ट दैट। दैट वे मुकेश जी केम आउट ऑफ हिज डेट्स। अ मैन हु इन द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग ही ड्रीम्स ही बैंकरप्टेड हिमसेल्फ आफ्टर द गैम्बल ऑफ मल्हार, माशुका एंड अनुराग, बट इट्स अ हैप्पी एंडिंग। 1970s में देखो व्हेन कभी कभी फिल्म, खयाम साहब सब ने उनको गवाया एंड ही बिकेम काइंड ऑफ मोर पॉपुलर देन एवर बिफोर। एंड नौशाद जी जो रफ़ी साहब को ही गवाते थे मोस्टली फॉर दिलीप कुमार साहब, उन्होंने 18 साल के बाद उनको बुलाया गाने के लिए बिकॉज स्टोरी ऐसी थी फिल्म साथी की कि ही नीडेड दैट वॉइस दैट मुकेश जी हैड, अ ब्यूटिफुल डीपली सोलफुल बैरिटोन वॉइस दैट वॉज परफेक्ट फॉर मेलेंकोलिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रोमांटिक मेलोडीज एंड दे वर हिट्स एज वेल। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मुकेश जी। आगे जाते हुए हम देखेंगे कौन से एक्टर्स ने गाया था इनके लिए। हम दिलीप कुमार साहब को बुलाएंगे, फिर हम बुलाएंगे देवानंद साहब को, धर्मेंद्र जी भी है, आई थिंक मनोज कुमार जी भी है, शशि कपूर जी भी है, सब फिरोज खान जी भी है, सब एक्टर्स जिनके लिए, और राजेश खन्ना जी भी है जिनके लिए मुकेश जी ने गाया। सुनते रहिएगा, मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: हिमालय कारपेट की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज लेमिनेट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं, विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
4: No, no prices, Himalayan Carpets.
3: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। That's 8574-8410.
1: Safo Travel. Auto protected.
2: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
4: In Dubai.
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
6: Clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
7: Dad.
8: What's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
9: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
10: Rice khareedne ka perfect time aa gaya hai. Buy 20 kg Tilda Basmati rice and get 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg, ya 2 times 10 kg, ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality or value, dono ek saath.
11: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
12: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
13: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
14: Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: जी हाँ, आपने 2 घंटे से ट्रिब्यूट सुना मुकेश जी का. इन द फर्स्ट आवर इट वॉज कंपोजर्स हु सैंग हु कंपोज्ड फॉर मुकेश जी, एंड इन द सेकेंड आवर इट इज एक्टर्स हु ही सैंग फॉर. ये था ऑफकोर्स शशि कपूर जी के ऊपर. एंड नेक्स्ट सॉन्ग इज हिम सिंगिंग फॉर हिमसेल्फ इन फिल्म अनुराग. अनुराग में म्यूजिक भी इन्होंने दिया, एक्टिंग भी किया एंड कंपोज भी किया और गाया भी. तो सुनिएगा ये गीत.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa or by using our Leica Radio mobile app.
0: Mukesh singing for Mukesh. Film Anurag. Composed by him.

और ये गीत पिक्चराइज्ड ऑन प्रदीप कुमार एंड इट इज मदन मोहन हु कंपोज्ड इट. सो अ ड्यूओ बाय मुकेश.

0: आपने जो दो गाने सुने, दीज आर सम ऑफ दोज फैबुलस सॉन्ग्स। कभी कभी ये आवाज सुनते ही आंख में आंसू आ जाते हैं। आपको ऐसा होता है क्या? मुझे बहुत होता है। एक दर्द भरी आवाज, मतलब कि गाना सैड भी ना हो लेकिन जो पैथोस और जिस अंदाज से और जिस फीलिंग से वो आवाज दिल को पहुंचती है, तो अपने आप ही आंसू आ जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अ ब्यूटिफुल डीपली सोलफुल बैरिटोन्स वॉइस, बैरिटोन वॉइस परफेक्ट फॉर मेलंकोलिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रोमांटिक मेलोडीज एंड हिज सिग्नेचर पैथोस एंड हैवी ट्रेजिक टोन वॉज सेकेंड टू नन। मुकेश जी, आपने पहला जो गाना सुना, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज के राजेश खन्ना जी पे पिक्चराइज हुआ एंड द म्यूजिक वॉज बाय नन अदर देन सलील चौधरी जी इन फिल्म आनंद। और दूसरा गाना आपने जो सुना, ए प्यासे दिल बेजुबां, दैट वॉज फिल्म बेगुनाह एंड इट वॉज पिक्चराइज एक्चुअली इट वॉज पिक्चराइज ऑन कंपोजर जयकिशन, शंकर जयकिशन के जयकिशन जी पे ये पिक्चराइज हुआ था एंड आई थॉट इट बी वंडरफुल टू शेयर इट आउट विद यू। एंड अगर आप उसकी पिक्चराइजेशन भी देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। एंड वॉट अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ सिंगिंग देयर एंड क्या कॉम्पोजिशन थी। शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया और शैलेंद्र जी ने लिखा और दोनों की कॉम्बिनेशन वॉज अमेजिंग। दिस फिल्म बेगुनाह 1957 की। एनीवे आगे बढ़ते हैं, हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज नन अदर देन हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी के लिए हमने फिरोज खान को सेव करके रखा था बिकॉज फिल्म धर्मात्मा में दोनों ने जो एक्टिंग की थी, तो वो गाना आप सुनिएगा। आगे जाते हुए जो भी गाने कुछ बाकी रह गए वो हम आपको सुनाते जाएंगे, आपको आप मायूस नहीं होंगे। एंड थैंक यू फॉर आई थिंक आई गॉट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस टुडे। मैं इतना पीछे हूँ आज आपके मैसेजेस आंसर करने के लिए, पर कोशिश है, जारी है कि मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। एंड आई विल ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच। लाइका गोल्ड पे मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट, ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स विच इज स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com, ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स। इट्स द 379th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स। एंड सैंडी शाह अभी नेक्स्ट आवर में 4 बजे आएंगे विद ड्राइव टाइम। एंड राज पत्तन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स ऑन द 379th डे ऑन विद हिज वंडरफुल शो। सो आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold.
3: जैमिन गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रह्मभट्ट। बाली ब्रह्मभट्ट जैमिन फूड्स, बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात। अवेलेबल एट एशियन स्टोर्स नियर यू।
4: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है।
3: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
4: सच?
3: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
5: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड।
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies. To trade, visit heraldplastic.com.
7: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris, and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Southall Travel.
8: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
7: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel. At all protected.
10: Start to

गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रह्मभट्ट। बाली ब्रह्मभट्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय जेमिन फूड्स, तुम्हारा टी टाइम नो असली हीरो। दाल भात, पाव भाजी, बिरयानी, नमकीन, खाखरा, चिक्की, पोटैटो चिप, मैंगो पल, पानी पूरी, सो मेनी वेराइटीज फॉर एवरीवन। मर्शे तुम्हारा नजीक ना एशियन शॉप्स मा।

0: लिपट गए।
1: 1978 में इन्होंने जब ये फिल्म जब रिलीज हुई सत्यम शिवम सुंदरम, किसे पता था मुकेश जी का आखिरी गीत था। होप यू एंजॉयड द ट्रिप। दिस इज द बेस्ट मैसेज ही एवर गेव टू द वर्ल्ड थ्रू राज कपूर। दिस इज द ओनली वे आई कुड एंड इट। एंड नेक्स्ट रफी साहब एंड मुकेश जी ने जो साथ में गाया था गीत वो

0: नितिन मुकेश जी ने कहा, पापा आप वहाँ ऊपर हैं, हम यहाँ नीचे हैं, लेकिन आपकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी सबके दिलों में। हाउ राइटली पुट।
1: Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.
2: Saal Mubarak Sahib Ji.
3: Saal Mubarak Sahib Ji.
0: Bye bye for now. It's Sandy Shah and Raj Bardhan on Leica Radio Midlands and Sandy Shah on Drive Time here.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह। Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Dad!
3: What's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 आवर लाइन।
5: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
6: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
8: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
9: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
10: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
12: हम

0: .com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
3: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive Radio Partner. Like

0: westbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford, A40 Western Avenue heavy westbound before you get to Gypsy Corner, A312 Church Road and Mandeville Road heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to Northolt Station, slowing on the A406 North Circular Road in both directions at the Hangar Lane Jarry today. Congestion on the A316 Chertsey Road westbound from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout to the Tube, and minor delays on the central line between Leytonstone and Hainault, between Leytonstone and Epping, between White City and Ealing Broadway, and between White City and West Ruislip due to cancellations.
1: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
9: बीकानेर वाला परंपरा भी,
10: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फर्ड, IG26HA, कॉल 07555-506015।
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply। Sona Tours, .co.uk, Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
12: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill, a desi tadka is total risk, hai na?
13: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
14: Next, Ashwini, in for Anisa Nasir on The Evening Show on Laika Gold.
15: नमस्कार, रवि शर्मा ब्रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
16: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। एंड कैसे कटे दिन, कैसे कटी रातें, फैंटास्टिक ट्रैक स्वर्ग फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज की आवाज में। एंड उसके बाद में आहा पहुंच गए थे ना स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में, ब्यूटीफुल एंड मेलोडियस ट्रैक लता मंगेशकर एंड बाबला की आवाज में चांदनी फिल्म से मितवा। कितने खुश हो गए आप लोग सब, दे देना तो मैसेजेस। जी हाँ, अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सारे के सारे धुरंधर आ चुके हैं, अपनी अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। बिल्कुल जी, आइए, टिक मार्क कर देगी दीदी। दीदी यहाँ पे रजिस्टर लेके बैठी है। हाँ जी, बहन जी बैठी यहाँ पे, टक टक टक टक टक सब एकदम टिक कर दिए जाएंगे कि आज कौन एबसेंट है और आज कौन लेट आया। कई लेट कमर्स आज जल्दी आ गए और कहने देखो हम हमेशा लेट नहीं होते। ओ माई गॉड, लुक एट दैट, आई सेड वन मोर। ओके, सो फील गुड वेंसडे मनाएंगे आप और हम शाम 7 से 10 बजे तक। 3 घंटे मस्ती मजाक गपशप इंटरैक्शन, सवाल जवाब, कुछ लाइफ की गहरी बातें और कुछ ऐसी रैंडम सी बातें, है ना। क्योंकि इवनिंग है तो भाई हमें कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, ना स्ट्रेस लेना है ना स्ट्रेस देना है, अच्छे अच्छे गीत सुनना है, मुस्कुराना है। पूछिए आप सबसे कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना। देखिए 2 दिन निकल गए हैं वीक के, तीसरा दिन जो है वो आ चुका है और ये मिड वीक वाला फील कितना अच्छा होता है ना, 2 दिन उधर 2 दिन इधर। वो असानी का जो डायलॉग था ना, आधे इधर आधे उधर, दैट वॉज फ्रॉम शोले इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, वैसे ही मैं बोलती हूँ, आधे इधर आधे उधर। ओके, तो आज कुछ सवाल है मेरे पास में, बिल्कुल सवाल है। अभी ऐसा है कि शहर के हमारे जो ट्रैफिक कंडीशंस होती हैं वो इतनी मन लुभावनी होती हैं, तो जब आप ट्रैफिक में लंबा फंस जाते हैं, मतलब 20-25 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, एक तो मुझे अपनी कहानी बताइए संक्षिप्त में, यानी कि इन शॉर्ट, कि ट्रैफिक में सबसे लंबा आप कितना टाइम अटके थे, कहीं रुके थे तो, और फिर उस दरमियान आपके जहन में क्या चल रहा था।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपीस 80 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: मिला रही है घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 21 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है ऐसा शो जहाँ पे आप चिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होते हैं, अपने किस्से कहानियाँ सुनाते हैं और साथ में जो मैं सवाल पूछती हूँ उसका जवाब भी देते रहते हैं, क्योंकि ये शो जो है ये इंटरैक्टिव शो है जहाँ पे आपकी गपशप होती है, हमारी तो होती होती है, साथ में म्यूज़िक भी चलते रहता है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में डॉन फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। कुछ फिल्में उनका संगीत, उनके गीत और आँखों के सामने कम्प्लीटली वो सॉन्ग दिखने लगता है, कितना खूबसूरती से बनाए गया है ना ये सब कुछ। एंड बात हो रही है ट्रैफिक के बारे में, तो सभी लोग अपना अपना अनुभव मुझे लिख के भेज रहे हैं। देखिए एक चीज़ जो है हमेशा करनी चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द पीपल पक्के में करते होंगे, शायद मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ, एक तो खाने पीने की चीज़ें ना हमेशा अपनी गाड़ी में रखिए, एमरजेंसी में टैबलेट्स अपने पास में रखिए, कुछ मेडिसिन जो होती हैं, जो मेडिसिन आपके हेडेक के लिए है या मोशन सिकनेस के लिए, प्लीज़ अपने पास रखिए। खाने का थोड़ा सामान तो अपने पास रखिए, पानी की बोतल ले रखिए अपने साथ में, बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर हम लोग जो ट्रैवल करते हैं जनरली हमेशा अपनी बैग में कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान तो मिल ही जाता है ना, या फिर जो जो नट बार्स होते हैं, अगर आप नट एलर्जिक नहीं है तो नट बार्स भी रखिए, बहुत सपोर्टिव होते हैं। मेरे साथ में हो चुका है कई बार कि जब भी मैं शो से निकलती हूँ रात में 10 बजे यानी उसके बाद में डाइवर्जन्स हो जाते हैं, तो जो रास्ता छोटे बिल्कुल ही बहुत कम टाइम का था वो बन जाता है कभी कभी 1-1.25 घंटे का, तो कोई ना बस एक कोई पॉडकास्ट लगा दो और निकल पड़ो खाते पीते हुए। देखिए कई चीज़ें ना हमारे लाइफ में हमारे हाथों में नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे बस इतनी सी देर के बाद में।
1: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
2: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
3: Lights on, shutters up, staff ready.
2: But today's customers don't start on the high street.
3: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
2: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
3: They walk into your competitors.
2: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery. Start

0: Feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai like a gold.
2: सात बज के 30 मिनट और इस टाइम तक जब हम पहुंच जाते हैं तो हम लाइफ की किसी न किसी थियोरी पे ज़रूर बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं द रेयर पर्सन थियोरी। रेयर मतलब इतने क्या हटके होते होंगे ये रेयर पर्सन। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा कोई एक इंसान आता है ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे जिनके साथ में आप एक अच्छा कनेक्शन फील करते हैं एंड यू आर नॉट वेयरिंग एनी काइंड ऑफ मास्क। वो वाला नहीं जो हम पैंडेमिक के समय पहन के बैठे थे। आप कोई पर्दा नहीं रखते हैं, आप ओरिजिनली जो हैं वो आप उस इंसान के साथ में फील करते हैं वैसे रहते हैं। देखिए हम ह्यूमंस हैं, है ना, और हम मैनिपुलेटिव हैं, लेकिन असली में हर एक इंसान बड़ा ही प्यारा होता है। उसमें कोई दुष्टता नहीं होती, कोई मैनिपुलेशन नहीं करने लगते। उन्हें ऐसा लगता है कि बस मैं खूबसूरती से जीऊँ, प्यार से जीऊँ, लेकिन उनके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिनकी वजह से वो अपने असली रूप में नहीं रह पाते, यानी कि उनके बिहेवियर में कोई ना कोई मिलावट होती है। पर ज़िंदगी के कहीं पे भी किसी भी पड़ाव पे वो एक इंसान उन्हें मिल जाता है जहाँ पे उन्हें लगता है कि बस मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ ना, ये इंसान मुझे वैसे एक्सेप्ट करे। एंड होता है, सच में होता है कि ऐसे लोग हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे वो लोग आए हैं जो बहुत रेयर हैं, जिनके बारे में सोच के आप मुस्कुराते हैं, जिनके साथ में आप बहुत सेफ फील करते हैं, है ना, आजकल वही तो ज़माना रहा नहीं कि कोई आए और आपको उठा के ले जाए अपने गाड़ी में भर के। आज आपको इमोशनली हर इंसान के साथ में सेफ फील करना अच्छा लगता है। वो जो इंसान है जिसके साथ में आप सेफ फील करते हो ना, जहाँ कोई जजमेंट नहीं है, वो होता है आपका अपना रेयर पर्सन। क्या आप वो रेयर पर्सन है किसी के लिए, या आपकी लाइफ में है ऐसा कोई रेयर पर्सन? अगर है ना तो संभाल के रखिए, लकी हैं आप। तो ये थी आज की रेयर पर्सन थियोरी। आई नो बहुत ही शॉर्ट थी, लेकिन इतनी शॉर्ट आप सबके लिए काफ़ी है, क्योंकि आप सभी काफ़ी अनुभवी लोग हैं। बताइए कैसी लगी आज की रेयर पर्सन थियोरी।
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी। Hey there, मैं हूं बाली ब्रह्मभट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: latest travel updates for London at Breakfast and Drive. The Evening Show with Ashwini.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive Radio Partner, Leica Radio Network.
4: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150205 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
3: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime. On Leica Gold.

0: वेलकम, दिस इज द सेकंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. सो मिड वीक शो हम सुन रहे हैं एंड 22nd ऑफ जुलाई आज का दिन वेंसडे. अगेन आप सभी जान गए हैं, अभी तो ना मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप सबकी तरफ से आ जाते हैं वो डायलॉग्स. दो दिन इधर एंड दो दिन उधर वाला ये जो सीन बनता है वेंसडे को, बड़ा अच्छा लगता है. एंड देखो ना, अभी ना इश्क मोहब्बत जो है, ये पहले दो गाने जो आपको सुनाए उनसे सीखना चाहिए हमें, है ना. एक इंसान कहता है चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया को मैं बताऊं जताऊं, जो भी है उनका ख्वाब देखिए इतना सही ख्वाब है, सब चीज इंसान को, लेकिन कहते हैं इतना सही ख्वाब है. अभिजीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में यस बॉस से सुनाया आप सभी को ये गीत एंड शाहरुख खान पे फिल्माया गया था. मनहर दास कांचन आनंद आवले की आवाज़ में कुर्बानी से सुनाया आपको हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे ब्यूटीफुल ट्रैक. अगेन 1980 से ये फिल्म. सो 90s वाले बच्चे खुश हो गए, 80s वाले बच्चे खुश हो गए, 70s वाले बच्चों की तरफ अब चल रही हैं. अगला ट्रैक आप सबको सुनाएंगे और इस एल्बम में बात करेंगे कुछ अमेजिंग और हटके ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में मुझे पता चला है तो आपको भी पता चलना ही चाहिए. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. 7 स्टेशंस, 1 पॉडकास्ट, 1 मोबाइल ऐप. दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क ऑनलाइन एंड वाया द SBI UK ब्रांच. एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपीज एंड 80 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: Track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 28 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। ये गीत फिल्माया गया था और एक वेरी फेमस जोड़ी फ्रॉम 70s कालीचरण फिल्म से सुनाया आप सभी को। ये गीत फिल्माया गया था रीना रॉय एंड शत्रुघ्न सिन्हा पे, है ना। ये भी जोड़ी कुछ कम चर्चाओं में तो नहीं रही उस समय पे। रीना रॉय अपनी ब्यूटी अपने अंदाज के लिए जानी जाती थी और समा मुझे लगता है कि 70s 80s की जो एक्ट्रेसेस थी, हर एक एक्ट्रेस जो है उनकी अदा ही कुछ निराली हुआ करती थी, है ना। ओके, अदाओं पे से मुझे याद आया, दिस इज़ व्हाट समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू से एंड शायद मैं भूल जाती थी। कॉम्प्लीमेंट्स, जी हाँ। अभी देखो हमने एक्ट्रेसेस कितनी सुंदर हैं, एक्टर कितने सुंदर हैं, हीरो कितने सुंदर हैं, हीरोइन कितनी सुंदर है, ये हम सब दूसरे को तारीफ करते रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं। पर आपकी तब कोई तारीफ करता है, जब कभी भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट आप सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेते हैं या नहीं, नहीं मैं कहाँ ये। ओके, सो हम एशियन लोगों की कहीं ना कहीं ये जो एक आदत है, इसको मैं अच्छी आदत कतई नहीं कहूँगी, इसलिए क्योंकि जब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है जेन्यूनली समझ में आता है, और जब कोई ऐवई कुछ कहना है इसलिए कहता है तब भी हमें समझ में आता है। तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रही है ना, तो सबसे पहले तो थैंक यू। मैं एक्चुअली इस देश में आके ये चीज़ सीखी हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्स को कितनी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए और कितनी अच्छी तरीके से आपको एक्सेप्ट करते आना चाहिए, बिकॉज आप खुद को भी जानते हो, है ना। एक तो वैलिडेशन वाली चीज़ हमने कई बार बात की अपने शोज़ में कि दूसरों से वैलिडेशन के लिए हम रुकते हैं, लेकिन दूसरे कहेंगे तो हम अच्छे, दूसरे कहेंगे तारीफ़ करेंगे तो हम अच्छे, ना ना। अपने आप को जानिए, समझिए, पहचानिए, आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं। जितने भी लोग अभी फ़िलहाल ये शो सुन रहे हैं ना, जी हाँ मोहतरमा, जी हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल, यू आर अमेजिंग पर्सनैलिटी। ओके, मुस्कुराइए, ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए ही मैं दे रही हूँ यहाँ से। तो जब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देना, उससे ले लीजिए और अपने बारे में अच्छी चीज़ें लोगों को बताइए। कहीं ना कहीं हम लोग हेजिटेट करते हैं कि अगर किसी ने कहा कि अच्छा तुम्हें ये चीज़ अच्छी है, तो उसके लिए ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपने बारे में अच्छा कुछ बताओ। अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आप लोग बहुत बेसिक चीज़ें बताएंगे, नहीं नहीं नहीं, यू एवरीबडी इज़ वेरी स्पेशल, है ना। तो अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं बताइए। ओके, ब्रैगिंग अलग है एंड अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ दो अलग चीज़ें हैं, समझिए इसका डिफरेंस। अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए, आप अप्रिशिएट करेंगे तो बाकी की पूरी दुनिया भी आपको अप्रिशिएट करेंगी। और न जाने आपकी अच्छी बातें जो आप खुद दूसरों को बताएंगे, तो हो सकता है कि आपकी तरफ कुछ लोग ऑलरेडी देख रहे थे, क्योंकि आप उन्हें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और शायद आपकी अपनी हॉबी अपने आप से सुन के सोचिए उनके लिए वो कितना ज़्यादा मोटिवेटिंग हो जाएगा। बस यहीं पे आई रेस्ट माई केस, जज साहब अपनी तारीफ किया कीजिए।
0: This is Leica Gold. Leica Gold. The Evening Show with Ashwini. Leica Gold. Emotion of the day.

0: इमोशन ऑफ द डे।
1: चलिए जी, तो कंपटीशन टाइम, फटाफट जरा अपना फोन अपने हाथ में रखिए, ध्यान से सुनिए अब मैं क्या कहने वाली हूँ। सो ये कंपटीशन है रंजीत रजवाड़ा का जो परफॉर्मेंस होने वाला है, गजल्स का प्रोग्राम है, उसके बारे में। लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद सिफत इवेंट्स एंड सोल जम लंदन फॉर नाइट ऑफ डिवाइन सोलफुल म्यूजिक विद प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत रजवाड़ा। इट टेक्स प्लेस एट हैरो आर्ट्स सेंटर ऑन थर्सडे 30th ऑफ जुलाई एट 7 PM। थर्सडे 30 जुलाई होने वाला है, वीक डेज में है, 7 बजे। सेंड इन द वर्ड गजल फॉर यू टू बी इन टू विन। ओके, गजल वर्ड लिख के भेजिए, मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे आपके नाम आते जाएंगे, लिस्ट आते जाएगी, और फिर जो एक रैंडम नाम निकलेगा उसके बारे में हम ज़रूर आपको बताएंगे कि विनर्स कौन है। अगर आप नहीं जीते तो दिल अपना छोटा मत करिएगा, डोंट वरी, आप टिकट्स परचेस कर सकते हैं, harroarts.com पे जाइए। टिकट्स आर प्राइज्ड फ्रॉम 25 pounds। यूज़ द कोड लाइका रेडियो और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा टिकट्स ऑनलाइन जब आप बुक करते हैं। विनर्स टिकट्स विल बी ईमेल्ड अक्रॉस, सो प्लीज प्रोवाइड योर वैलिड ईमेल एड्रेस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अपना एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वीकडे में आप जाने वाले हैं तभी आप प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। आप लिख के भेजिए मुझे वर्ड गजल तो आप रंजीत रजवाड़ा का ये शो अटेंड कर सकते हैं थर्सडे 30th of July। एंड एज आई सेड कि अगर आप लोगों ने नहीं जीता है टिकट तो नॉट टू वरी, बिल्कुल 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ईमेल के द्वारा मिलेगा। तो अपना वर्ड गज़ल लिखिए, उसके बाद में अपना ईमेल भी दे दीजिए।
2: लाइका गोल्ड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: Extra podcast update.
1: तो भाई लाइका प्रेजेंटर्स का ये एपिसोड है जहाँ पे आप सभी अपने फेवरेट प्रेजेंटर्स को देखेंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे। एंड इस एपिसोड में डॉनी ब्रेस्को, बाली ब्रह्म भट्ट, अनिका, रूबी रजा, रेडियो वाली अनीसा नासिर भी हमारी हैं। और साथ में प्रेजेंटर्स के लाइफ में कैसे कैसे सेक्रीफाइसेस होते हैं, अपनी रेडियो शोज़ को संभालते हुए उनकी ज़िंदगी में क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये सब आप सुनेंगे। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर your streaming platforms.
0: Like Extra is here. The Evening Show with Ashwini. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Dad,
4: what's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the

0: SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
1: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
0: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
2: Conslow, ab India ka favorite swad bilkul aapke paas.
3: Bikaner wala parampara bhi swad bhi.
4: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउस लो TW3 1QT. कॉल करें 07487-687-885.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T&Cs apply.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Leica Radio Network presenters get candid about films, lifestyle and controversies.
7: It is. You have to be really dedicated to be able to
8: become a
7: radio presenter. Yeah. So you're giving sacrifices around you as well.
9: True.
7: Mm-hmm. Whether it's at home or whether it's family.
6: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.
10: Ye hai Leica Gold.
6: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
11: For £1, you'll get 129.13 Indian rupee, 371.58 Pakistani rupee, 449.8 Sri Lankan rupee, 165.05 Bangladeshi taka, 89.21 Afghan Afghani, 173.09 Kenyan shilling, 1.33 US dollars, 63.22 Mauritian rupee.
12: Leica Radio.
6: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
12: Leica Gold.
6: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
11: Gold is currently trading at £99.48 per gram.
6: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: ओके जी, तो इस आवर के आखिरी गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले बात हो जाए कंपटीशन के बारे में. तो कंपटीशन जब भी हम अनाउंस करते हैं ना, तो कितने हमारे साइलेंट लिसनर्स हैं, फटाफट वो आ जाते हैं. और बड़ा अच्छा लगता है ये देखने में कि इतने सारे लोग हमारा शो सुनते हैं एंड कॉम्पिटिशन में बिल्कुल जीतने के लिए, सहभागी होने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं. तो बिल्कुल वेलकम जी हमारे शो में, और देखते हैं कि कौन जीतने वाला है इसमें. तो आई वुड लाइक टू से द विनर इज ओम प्रकाश लाल जी. कंग्रेचुलेशंस. आप अपना ईमेल भी शायद आपने दिया है, तो बिल्कुल आपको हम ज़रूर सारी डिटेल्स भेजेंगे. कंग्रेचुलेशंस. और जिन्होंने नहीं जीता है, बिल्कुल जाइएगा haro@.org पे और वहाँ पे आपको टिकट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. हमारा रेडियो का नाम दीजिए लाइका रेडियो, 10% डिस्काउंट ज़रूर मिलने वाला है. इस आवर का आखिरी गीत लता मंगेशकर एंड शब्बीर कुमार की आवाज़ में, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ट्रैक्स बिकॉज ऑफ द वर्ड्स. इसमें जो लिरिक्स जो है, जिहाले मस्किन मुकुल बरंजिश, इज दैट अ वर्ड? ओके, आई डोंट वांट टू प्ले विद द वर्ड्स. मैं कुछ मिस प्रोनाउंस नहीं करना चाहती. गुलामी फिल्म से सुना रहे हैं आपको ये गीत. 1985 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. तो फील गुड वेंसडे हमने सुना दिया आपको, तो आज मैं गजल या कव्वाली क्या सुनाने वाली, अंदाज लगाइए, लिख के भेजिए. लास्ट गीत की तरफ हम चल रहे हैं इस आवर के, और नेक्स्ट आवर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं. कितना फटाफट टाइम जा रहा है. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी.
6: नॉनस्टॉप क्लासिक्स. क्लासिक्स लाइक अ गोल्ड. द इवनिंग शो विद अश्विनी.
8: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
9: New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
13: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
14: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
15: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
14: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
16: 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
17: The Evening Show with Ashwini.
16: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। और इस आवर का आगाज हमने किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज राजा हिंदुस्तानी से लिया था, उदित नारायण की आवाज में आए हो मेरी जिंदगी, व्हाट अ लवली ट्रैक दैट वन इज। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये वादा रहा, विच वॉज रिलीज इन 1982। उस फिल्म से सुनाया आप सभी को सेकेंड गीत। तो गजल या कव्वाली में क्या सुनाने वाली, जरा लिख के भेजिए और देखते हैं कि किसका जवाब निकलने वाला है सही।
1: Ashwin is brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपए एंड 80 पैसे। And don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 9:27 इट्स 9:27। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। चरस फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। आर्टिस्ट ऑफ द वीक है द गॉर्जियस द ब्यूटीफुल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। पूरे सप्ताह उनकी फिल्मों के गीत आप सुनेंगे बिकॉज शी इज आर्टिस्ट ऑफ द वीक। अब ये गीत फिल्माया गया था हेमा मालिनी ऑब्वियसली एंड हैंडसम हंक, अरे बाबे सबके लाडले प्यारे दुलारे धर्मेंद्र जी के ऊपर। एंड देखिए गानों का कैसे इफेक्ट होता है ना कभी कभी कि अच्छा चलो सो जाते हैं, मतलब वो जैसे वो सोना वर्ड आ जाता है तो अपने आप लाइक आई स्टार्टेड यॉनिंग यहाँ पे। हाँ इट्स स्टिल अभी हाफ एन आवर है शो बाकी होने के लिए, लेकिन वर्ड्स का इफेक्ट हम सब पे होता है ना। राइट सो आज 22nd of July मतलब किसी का बर्थडे एनिवर्सरी, कुछ तो स्पेशल हुआ रहेगा जिंदगी में किसी के, और कुछ के लिए ठीक है यार रोज़ के जैसे आज का दिन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज मनाया जाता है नेशनल मैंगो डे, उसके साथ मनाया जाता है नेशनल हैमक डे, नेशनल रैट कैचर्स डे, सीरियसली वाह, नेशनल बी अ गुड टीममेट डे, वर्ल्ड ब्रेन डे, फ्रेजाइल अवेयरनेस डे। एंड व्हाट एक्चुअली अट्रैक्टेड मी वाज ये मैंगो डे, मतलब आम आम होता है आम खास होता है, आम आम नहीं होता आम खास होता है। What was that? Why I'm saying all this thing? ठीक है तो फिर मैंगो से रिलेटेड बड़े अच्छे फैक्ट्स भी हैं, आई एम श्योर आप लोगों को पता होंगे, स्टिल थोड़ा सा एक रिविजन हो जाए साथ में। 20 मिलियन टन्स ऑफ मैंगोज आर ग्रोन एनुअली, दे आर रिलेटेड टू कैश्यूज एंड पिस्ताचूज, एंड दे प्रोवाइड 100% ऑफ योर डेली वाइटामिन सी। अ बास्केट ऑफ मैंगोज इज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप इन इंडिया। यस आम लेके जाते हैं सब एक दूसरे के, अब आम की सीजन में मैंगो ट्रीज कैन ग्रो एज टॉल एज 100 feet एंड मोस्ट ऑफ द मैंगोज सोल्ड इन US come from Mexico, Peru, Brazil and Haiti. And इतने सारे facts देने के बाद में अब चलते हैं हम हमारे इस अब के फीचर पे, गजल या कव्वाली। मैं क्या सुनाने वाली, तो मैं सुनाने वाली हूँ कव्वाली मोहम्मद रफी मन्ना डे आशा भोसले की आवाज में बरसात की रात से सुना रहे हैं आपको ये कव्वाली।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है
3: Like a Gold.
4: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Like a Gold रेडियो, Like a Radio ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Like a Radio मिडलैंड्स पर.

0: कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271.
5: Shout at football matches.
6: Oh, wake up!
5: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
7: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: The Evening Show with Ashwini.
7: Making summer currency updates are sponsored by Lemfi Mobile App. Network. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
9: For £1, you'll get 129.16 Indian rupee, 371.56 Pakistani rupee, 449.87 Sri Lankan rupee, 165.07 Bangladeshi taka, 88.96 Afghani, 173 Kenyan shilling, 1.33 US dollars, 63.23 Mauritian rupee.
10: Leica Radio.
7: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download Lemfi now. T's and C's apply.
10: Leica Gold.
7: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
9: Gold is currently trading at £99.47 per gram.
7: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
9: चलिए मिला लेंगे घड़ियां आखिरी बार इस अवर में. इट्स 44 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. फील गुड वेंसडे मनाया आपने और हमने साथ में. तो याद रखिए गोल्ड नाइट्स ओवरनाइट सर्विस लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड और एक हमारा रेडियो चैनल सुनिएगा. सुबह सवेरे आएगी हमारी प्यारी प्यारी काजल, उनका साथ दीजिएगा. मैं मिलूंगी कल शाम. थ्रिलिंग थर्सडे होगा. ओए कितना जल्दी थ्रिलिंग थर्सडे आ गया ना. चलिए कल थ्रिलिंग थर्सडे बनाएंगे साथ में. और दो आखिरी गीत इस आवर का, एक तो है शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में प्यार किया है प्यार करेंगे. थोड़ा एनर्जेटिक गाना है, ज़रूर सुनिएगा. एंड आखिरी गीत होगा हमका माफ़ी दे दो, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में. हमेशा की तरह यही कहेंगे प्यार बहुत बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो प्यार दो, प्यार लो. एंड पावर का यूज़ तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, आई एम श्योर आप लोग वो नहीं करते. लाइफ बड़ी सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं. अपने आप का खूब ख्याल रखें. वेदर अभी अच्छा हो रहा है तो मैं चलूं. गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर.
7: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स.
11: दिस सुपरहिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस. डिस्कवर द सीरियस डिलीशियस पॉसिबिलिटीज विद टिल्डा.

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साफो ट्रेवल at all protected.
3: Dad,
4: what's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale, I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजास, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444, दैट्स 0208-907-2444।
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
8: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kijiye Kalpesh Patel on 0208-922-3344 24-hour line.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
7: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London. Soon.
8: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath. Sirf Laika Gold par.

0: Dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum dir tanum.
1: ये है लाइका गोल्ड. एक्सपीरियंस एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग ऑफ टाइमलेस गजल्स. द प्रिंस ऑफ गजल, द यंगेस्ट गजल मेस्ट्रो रंजीत रजवाड़ा. नजर से नजर. परफॉर्मिंग लाइव इन लंदन ऑन थर्सडे 30th ऑफ जुलाई एट हैरो आर्ट्स सेंटर. बुक योर टिकट्स नाउ एट harroarts.com. लाइका रेडियो नेटवर्क लिसनर्स कैन एंजॉय 10% ऑफ यूजिंग द प्रोमो कोड लाइका रेडियो. हरी, लिमिटेड सीट्स रिमेन फॉर दिस इंटिमेट लाइव कॉन्सर्ट. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Chalo jaiye ek nava safar par.
5: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे. कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स.
6: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ.
5: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे. वधु माहिती माटे
6: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
5: 0116266481 पर. वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर.
7: सो ये डीकैफ ओट मिल्क एक्स्ट्रा बट नॉट पाइपिंग हॉट. 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
8: No worries. I'm having fun on PlayOjo.
9: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
7: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
8: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
10: Feel the fun. PlayOjo.
11: 18 plus, gamble aware.
12: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
13: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: This is Leica Gold.
1: Evening. How's your night shift going? Just a quick check-in from Acorn Insurance, the taxi specialists. We've been by your side for over 40 years, helping new drivers earn a no-claims bonus from day one and accepting up to 9 years no-claims from veteran cabbies. That's why we're the largest taxi insurance specialist in the UK. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Bye for now. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
4: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।